इस अहंकारी बाप ने यह कह दिता कि मैं तेनू एक कोड़ी दे लड़ लावांगा जिस दे हाथ पैर उंगलियां भी झड़दियां पईआं ने, तू ऐसे जींदे जी नरक भोगेंगी क्योंकि मेरे हाथ विच बहुत कुछ है। ते उस बच्ची ने अपने पिता दी आग्या नू सत करके अपने सिर

0: तू मेरी मां नहीं, मैं तेरा पुत्र नहीं। पिंड परा तो हर गुण गाए, दूजा प्रमाण मिलता है। जे किते प्रहलाद की मां कहती है कि बेटा तू मन जा, देख तेरे बापू ने सारे उत्ते अपना हुक्म लागू किया। बस दा बस की नी सबरानी राजे, बिनती करे पटरानी। पर किन्ने पुत्र प्रहलाद कहा नहीं माने, तिन तो औरै ठानी। प्रहलाद भी मां दे बचन नहीं मानदा, अज मां रोक दिए धीए, देख तेरे बापू दा गुस्सा बड़ा भैड़े। तू भी कह देखा के देन वाला मेरा बाप है, पर उस बच्ची ने अगो उत्तर दिता है।
1: कयो कंसु निश्चे ठाना, अपर थान को ब्याहो न माना।
0: उस वक्त ओ कहन लगी, नहीं महा, जो कुछ मेरे भागां विच निरंकार ने लिख दिता है, ओ कुछ खो के रहना है। जे तू सोचे के मैं ए कह दिया के देन वाला मेरा बापू है, नहीं, मैं जिस दे दर नाल जुड़ी हां, जिदी बाणी मेरे कन्ना विच पैंदी है, ओ ता आवाज दे के एक बचन कहिंदा गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर, पिरंदा है ना गिराह दर के, ऐ गुरु के सिखा जेड़े तू आसमान विच उड़दे परंदे देखने। खे मां, मेरा गुरु बोल के कहिंदा जेड़े आसमान विच उड़दे परंदे ने, इन्हां ने कदी अपने आलणियां विच रिजक इकट्ठा नहीं कीता, इन्हां दे आलणियां विच कोई रोजी रखन नहीं देंदा। परंदा है ना गिराह जर, दरख्त आब आस कर, दिहंद सुई जेड़ा इन्हां पंछियां नूं रिजक देंदा पिया है, ओ मैनूं रोजी देंदा है। तू कहनी है कह दे बापू देण वाला नहीं, दिहंद सुई एक तू ही एक तू ही। मेरा गुरु तां आवाज दे के कहिंदा मां ना कर चिंत, चिंता है करते। तू चिंता करनी है कि रिजक बापू देंदा है, पर नहीं, ना कर चिंत, चिंता है करते। हर देवे जल थल जनता सब तै, कहन लगे अचिंत दान दे प्रभ मेरा, विच पाथर कीट पखानी है। ओ ता कीड़िया नू रिजक देंदा है, मेरा गुरु ता आवाज दे के कहिंदा है रहन दिस प्रभात तुए ही गावना, जी जंत सरबत नाओ तेरा ध्यावना, तू ताता दातार तेरा दिता खावना। देन वाला केवल एक ओवे, पर जे मैनू तुसी कोड़ी दे लाड़वी ला दोगे, मैं इस नू करतार दी रजा समझ के, उस वैगुरु दा हुक्म समझ के प्रवान करांगी।
1: कहो प्रथम सोई पत मेरा, तथा भाग मैं अपनो हेरा।
0: जे मेरे भागां विच ओ कोड़ी पति लिखिया महा, फिर मेरे भागां नू गुरु परमेश्वर तो बिना कौन है मिटाण वाला। मैं इस गुरु की आज्ञा नू सत करके मनांगी।
1: रहे हटाए लोग मिल कने, कुश्ती संग कष्ट बहु पने।
0: कहिंदे ने केवल मां नहीं, इस पट्टी पिंड दे लोग भी इकट्ठे होए ने, ते स्याणे दाने आ के कहन लगे बचड़िए, तू अपने बापू दे हुक्म अगे सिर चुका दे। तू मन जा के तेरा पिता सब कुछ देण वाला है, पर जितने भी दाने स्याणे आए, इस बच्ची ते किसे दी आवाज दा किसे दे बचन दा असर नहीं। केवल इको राटे के जो मेरे निरंकार दा हुक्म है, ओनू कोई नहीं मेट सकदा।
1: रहे फेर सो फिरी ना फेरे, फेरे फिरी साथ तिस गेरे।
0: कवि जी किन्ने बड़िया ने रोकन दी वर्जन दी कोशिश कीती, पर ओ बच्ची रुकी नहीं। अखीर ते उस नरदई बाप ने की कीता, उस कोड़ी दे घर नाल ओदे मापियां दे नाल उन्ने अपना संपर्क बनाया, ते कहन लगा मैं अपनी धी नू तुहाडे कोड़ी दे लड़ लाना चाहना। जिन्हां दा बच्चा सी उन्हां दा किरदार भी कंब गया दुनी चंदा, के देख का साडा बच्चा तां कोड़ ने खा लिया, तेरी धी सोहनी सुनखी मालक दी कृपा, ओदा तन बिलकुल आरोगे। तू अपनी धी नू किसे होर सियाणे सूझवान दे लड़ ला दे, पर कहिंदे ने ओ दुनी चंद ते कोई असर नहीं। उस कोड़ी नू लियांदा गया, ते इस बीबी रजनी नू इस बच्ची नू उस कोड़ी दे लड़ लाया, ते उन्हें परकर्मा कीतियां, इस बच्ची दे फेरे कोड़ी नल करा दिते हन।
1: नहदा इसको निरपनै दीना, मन मूरख ने हठ दिड़कीना।
0: कवि जी कहिंदे धी नू घरों तोरन लगा, ओ चारे तियां दूसरियां भी देखदियां पईयां ने, जेड़ियां कहिंदियां सन देण वाला इक

है कि सच नानक होशी की सच तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा जब गुर बोले तब विषम हुए जाए।

जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ा तू गुर पिता तू है गुर माता तू गुर बंधक मेरा सखा सखा जो हमारी विद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जान हो आपे हम रुड़ते फिरते कोई बात ना पूछता

अकाल मूरत अजुनी शैपं गुर प्रसाद जप आहाद सच जुगाद सच सच नानक खुशी पी सच बेशुमार अथाह अगंत अतुल ज्यों बुलाव हो त्यों नानक दा

गुरु अर्जुन विघ्न के नाशक, विघ्न के नाशक, श्री हर गोविंद शुभ सुमत प्रकाशक, श्री हर राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी, गुरु हर कृष्ण मनावो बहोरी।

की संख्या में उसके बाद बाबा हरनाम सिंह जी बेटियां भी क्यों हुए अनुसार श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी कथा संतान के अंदर उठे सेवा कर रहे श्री अमृतसर साहब विच रहे थे अपने उन्होंने तो बाबे भगवान सिंह जी महाराज साहब जी कथा करी बाबे भगवान सिंह जी तो अगे बाबा अमीर सिंह जी महापुरुख जेडे अमृतसर साहब तो सत साल कथा करते रहे संतान जिन्हों को भरोसा है हूं बाबा प्रताप सिंह जी उथे सेवा करते हैं श्री अमृतसर साहब उन्हों तो सेवा हुई अगे संत विष्णु सिंह जी मुरारे वाले ने बाबे हरनाम सिंह तो पढ़ के मुरारे विच कथा की संत बाबा सुंदर सिंह जी भगवान वाले जेडे इतने भी गुरु महाराज साहब के चरणों पूजते सकते दर्शन करते रहे हैं उन्होंने पासों अमृत रूप बाणी की कथा करके संतों की देह संतों की विचर के प्रचार किया जिन्होंने अपने जीवन में 10 लाख तकरीबन सिंह पंचाचारण की सेवा च हो के खंडे के अमृतपान की सेवा च लगे बेअंत संतों ने बड़ो सारियों लाभ उठाया बहुत सारे काठी सिंह होए बहुत सारे ज्ञानी होए उन्होंने सत संगत जी इस प्रकार सेवा इसी कथा संत महापुरुखा ने संतों के ताई पढ़ाया फिर वाहिगुरु की आग्ञा नाल मारे के चरणों की याद वसे उस सेवा नु सत संगत जी बेअंत सिंह ने जहेदार गुरदयाल सिंह जी जो बोपारा है 28 कथा कर रहे हैं मगरों दो इसे प्रकार होर कई सिंह पुजारी अजय सिंह जी नारायण सिंह जी उन्होंने शरीर हम सेवा कर रहे हैं इसे प्रकार होर बेअंत सिंह संतों को भरोसा आए सन जो सारे इलाकों में प्रचार करते रहे उन्होंने अरदास भी यह सेवा हिस्से आई आगे की महापुरुषों के तुम ये साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की कथा अपने सिर के संगुरा का गंदा समझना कि जिन्ना चर शरीर बनिया रहे साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब की कथा करते रहना।

बख्शंद पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र चरण कमलों विच सबाईमान सतसंगी प्यारियो असीसां देंदे होए गुरु फतेह जी सांझ करो आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साडा अटुट विश्वास सिखी विच है, फिर भी जदों नाल दे धर्मां नूं वेखने हैं मन हैरान हुंदा है। उन्हां ने टीवी राही प्रेस राही जितने भी वसीले वरत सकदे सन उन्हां वरत के आपो अपने धर्म का प्रचार जेड़ा बहुत अच्छे ढंग नाल कीता है। सिर्फ थोड़े जे इशारे करने ने मैं, हालांकि उन्हां दे जेड़े मुर्शिद ने गुरु ने वह बहुते कोई चंगे काम करदे नजर नहीं आउंदे, खिमा करियो, फिर भी वह लोग अपने धर्म का प्रचार करते और घर घर उन्होंने वाड़ दित्ती गल। शायद ही कोई बंदा होवे जिन्हों रामायण बारे ना पता होवे, शायद ही कोई बंदा होवे जिन्हों महाभारत बारे ना पता होवे, उन्हें कर दिता ऐसा काम। लेकिन असी सिख होने के नाते हालांकि साडे कोल सारे ही सोना पिया है, इत्थे कोई किसी की पत्त बचाउंदा नजर ते आएगा लुटदा नहीं, इत्थे कोई किसी की खातर खून डोलता नजर ते आएगा पर किसी का खून पींदा नहीं, इत्थे कोई किसी की तली ते रोटी रखता नजर ते आएगा पर किसी की रोटी चुकदा नहीं। साडे कोल सोना सी, असी सोना भी नहीं बेच सके, संसार की मंडी च असी कोडी मुल नहीं छड़िया। मैं खुद भी उहदे विच दोषी हां, पिछले दे समय च सिख धर्म के प्रचारक दो ही गल्लां करदे हैं, या तो खिमा करियो जे हिंदू धर्म दीयां कथा कहानियां सुना के चले गए या फिर चुटकले सुना के चले गए। एक दिल विच मन नहीं तमन्ना जागी, वह मना तू दूजिया नूं कहना तू आप खुद हराम की रोटी खाना, तू हलाल दी नहीं खांदा। इस भावना ने मन विच एक चिणग जी जगा दित्ती, तो पिछलेरे समय तो जिन्हां जिन्हां विच स्टेजां ते जाण दा मौका मिलदा है ते दार्शनिक कोशिश है भी अपने इतिहास नूं माण मत्ते इतिहास नूं उह संगतां नाल सांझा करा। इसे भावना नूं लैके पिछलेरे दिनां तो एक लड़ी, सिर्फ एक छोटा जिहा पोर्शन, बाकी नहीं। 1700 तो शुरू करना सी पर मैं कर नहीं सकिया, वो तो कुछ एक बाद दा समा लेके 1800 तक या महाराजा रणजीत सिंह दे राज शुरू होण तक मेरी भावना भी वह इतिहास की लड़ी मैं तुहाडे नाल सांझी कर रहा। पिछले कई दिनों तो आप लगातार ये विचार दिया ने, अज की जिहड़ी विचार है। कल रोज आपा विचार इत्थे छड्डी सी, जकरिया खां 1745 विच मर गया, खालसे दी जुत्ती दी नोक अगे लैके लै गया भाई तारू सिंह। भाई तारू सिंह दी शहादत आउंदी है, जकरिया खां भी मरदा है, इह उहदी जिंदगी दा आखरी कतल है। अब्दुल समद 1726 दे विच मुल्तान दा गवर्नर बनाया गया सी, उस तो बाद विच उहदा पुत्र जकरिया खां 1726 दे विच ए लाहौर दा मुखिया बनिया सी, उस तो बाद विच ए लगातार कतल करदा आया सिखी दे, करीब 10,000 तो उत्ते इन्हें सिख कतल करवाए। 1745 विच इहदे जीवन दा अंत कर दिता। इन्हें फड़िया कईयां नूं सी, इन्हें पकड़िया कईयां नूं सी,
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਵਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਪਕੜ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੋਪਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੇਅਦਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਲਾਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਿੱਛੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ। ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੀਰਾਂ ਕੋਟ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਹੀ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਪਾਪੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ। ਪਰ ਦੋ ਸਿੱਖ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹ ਬਚ ਗਏ, ਉਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਗੇ ਤੁਰਾਂ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 1745 ਵਿੱਚ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਮਰਿਆ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤ ਸਨ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਯਹੀਆ ਖਾਨ,

0: बस है पठान, बस है बास पठान को दीनों बिपर बताई।
1: तन तन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी पावन पवित्र हजूरी भी सजी हुई गुरु रूप गुरु खालसा साध संग जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज चल रही लड़ीवार कथा विच श्रवण कर रहे हां प्रसंग श्री चमकौर साहब अचानक तुरकां ने हमला किया सहिदा बेग छरनी पिया श्री आनंदपुर साहब पहुंचे ने। दो तीन महीने का समा बड़ा सोहना लंघिया अचानक एक ब्राह्मण ने पुकार की थी कि मेरी स्त्री नूं खो के लै गया पठान बसी पठाना वाला। इस प्रकार देवदास नाम है ब्राह्मण का जाबर खां पठान है। महाराज जी ने बाबा अजीत सिंह जी नू 100 के करीब घोड़ सवार दे के भेजिया। शाम 2 घड़ियां दिन बाकी सी जदों चले ने सारा पेंडा तय करके उत्थे पहुंचे। रात नू जाके घेरा पा लिया। गुरां दा वचन सी के सिर्फ कल्ले पठान नू ही लियाउणा होर किसी नू तंग नहीं करना। महाराज का वचन मन के पठान नू बन लिया रस्सियां नाल अते उस ब्राह्मण की स्त्री नू भी नाल ले के आए है। आके महाराज नू फतेह बुला के सजे हन दीवान दे विच। आओ अगे श्रवण करदे हां सतगुरु महाराज ने की सजा दित्ती की उपदेश दिंदे ने खालसे नूं। प्यार सत्कार नाल गज के आखो सतनाम श्री वाहे गुरु सतनाम श्री वाहे गुरु
0: साहिब जी। जो पई तुरक सुबत जैसा जिस भाए जाए अचानक घेरो पाए।
1: सहज सुभाव की बिना किसी डर तो बिना किसी खौफ तो ये साडा राज है मैनू केड़ा कोई कुछ कह सकता है मैं जो मर्जी करा। इस तरह आराम दे नाल जबर खां सुता पिया है अचानक ही जाके सिंघां ने उहदे घर नूं घेरा पा लिया।
0: किसो न आगे शस्त्र उठायो गयो पठान सबंध चलायो।
1: क्योंकि हो सकता है कवि जी कहंदे ने किसी ने अग्गों शस्त्र नहीं उठाया हो सकता वो इलाके दे विच बदनाम होवे। जबर खां पहला भी लोगों दियां धीआं भैणां चुक लिया होवे ताइयों किसी ने उहदी मदद भी नहीं की है कोई विरुद्ध भी नहीं बोलिया है। सिंघां ने जाके बड़े आराम दे नाल उसनूं पकड़ लिया।
0: जिनी को एक तुरंग चढ़ायो ए कुरीत फल सबन सुनायो।
1: ब्राह्मणी नूं बाहर लिआंदा पठान नूं भी खड़ा कर लिया पिंड वालियां नूं इकट्ठा करके। सिंघां ने उहदा कसूर सुनाया बई असीं इहनूं एवें नहीं लैके जा रहे इहने आह कुकर्म कीता है इस करके असीं इहनूं पकड़ के लै

0: एक पूरे जट ने भेजा सी दल बिदार जिहड़ा घोड़ा सी महाराज का पहला ए दूजे का नाम सी दल शिंगार ए दल बिदार एक है बेगी एक नीला सतगुरु के घोड़े बदलते रहे जदों चंगा घोड़ा आया सोहना इस प्रकार के नाल महाराज ने वह घोड़ा हुक्म किया कि लैके आओ
1: मिष्ट कृत को रातव करो अब लो पली पांत प्रित परो
0: हुण उहनूं चंगीआं निहारियां खवाईआं चंगा घिओ आदक जां देना जां मिठा पा के देना ऐसिया निहारियां खवा के सोहनी पालना कीती होई सी
1: आज पाए कर दीन शिंगारो भूखन करन हमेला डारो
0: महाराज कहने अज पाई उहदे ते सोहनी काठी पाओ ते उहदे गले दे विच जिहड़ियां हमेलां हुंदियां ने गहना हुंदा गल दा सजा के चंगी तरह घोड़ा लियाओ
1: कंचन के को जेवर पहरावो पले तैयार करके ले आवो
0: सोने दे सोने गहने पाओ भले तरीके नाल साडा जिहड़ा घोड़ा है ये तैयार करके ले आओ
1: हुक्म मान सेवक किए त्यारा अलंकार कंचन शिंगारा
0: हुक्म मन के सेवक ने सोहने गहने पाए जिथे जिथे तक सजा सकते सी गुरां दा सुंदर घोड़ा सजाया
1: कलगी धरी सीस पर खरे लूल हमेल सजावन करे
0: कलगी सोहनी जिहड़ी सी उह सजाउणा कीती घोड़े उहदे वी कलगी लग जांदी सुंदर अते लूल हुंदे ने मोतियां दे छब्बे तो इस प्रकार दे नाल अरबी दा अखर होण करके मोतियां दे जिहड़े सोहणे छब्बे सी उह लाउणा कीते जां मोती लटकाउणा कीते हन
1: कबका दे कर लियायो तहां प्रभु बिराजे बैठे जा
0: सोहणी लगाम पा के घोड़े नूं उत्थे लै आया जिथे सतगुरु महाराज

0: महाराज ने देखा कि घोड़ा बड़ा सोहना है, बड़ा सुंदर है, सुडौल है, चंचल है, फुर्तीला है। इस तरह घोड़े नूं देख के, शस्त्र नूं देख के, एक तैयार पर तैयार सिंह नूं देख के, इस तरह सतगुरु जी बड़े खुश हुंदे हन।
1: उठ करना निज तब चल आए, एक रकाब पग पंकज पाए।
0: कृपा दे के जाने सतगुरु जी उठ के उस वक्त आए ने, घोड़े दे एक रकाब दे विच अपना जो चरण है खब्बा चरण पा के घोड़े दे उपर चढ़न दी तैयारी विच हन।
1: ग्रीव केस गै है के जवै, उकसे उपर चढ़बे तवै।
0: ये जेड़े घोड़े दी गर्दन दे उपरले पासे वाल हुंदे ने, इन्हां नूं पकड़ के चढ़िया जांदा है। महाराज ने जदों उहदी गर्दन दे वाल पकड़े अते रकाब विच चरण पाया, जदों घोड़े दे उपर चढ़न लगे,
1: उछलियो घोड़ा बल को भरियो, ने आसन पर श्री प्रभ थिरियो।
0: घोड़ा उछल गया उस वक्त, छाल मार गया। उस वक्त सतगुरु महाराज फिर घोड़े उते

0: महाराज वापस उतरिया एकदम धरती ते खड़े हो गए, पर सज्जी बांह नूं एक झटका वज्जिया थोड़ा जिहा, एकदम घोड़े ने छाल जो मारी। सतगुरु फुरतीले आप भी बहुत ने, एकदम दे नाल अणजाण बंदा हुंदा तां घोड़ा उहनूं सुट दिंदा, पर सतगुरु सच्चे पातशाह तां आप मालक ने, सृष्टि दे अंतरजामी सतगुरु जाणदे ने की होण वाला है। इस करके सावधान रहे,
1: जडे बोर पीड़ा कुछ पए, सी तुरमाल संग बंद गए।
0: जदों दोबारा फिर घोड़े ते चढ़े, बांह विच कुछ पीड़ होई, झटका वज्या बांह नूं, फिर सेवक ने चिट्टे रंग दा

0: फिर उतर के घोड़े तो अंदर गए महलों के माता जी नूं जाके पैरी पैणा करते सन, हमेशा सत्कार करते सन, फिर जाके कोल बैठे हन।
1: गुर सपूत पर दृष्ट पसारे अत प्रिया हेरत है बलिहारे।
0: अपने गुरु सपुत्र दे उत्ते माता ने दृष्टि पाई, सारा शरीर तक्या, बहुत

0: युद्ध विच टेके लड़ो जाओ फिर हुण जंग विच जित प्राप्त होवेगी।
1: अतो रिपन दल को दलो पकलो शस्त्र क्रुद
0: जाओ जाके मैदाने जंग दे दुश्मन नु मारो ते अपने हत्था दे च शस्त्र पकड़ लो वीर रस विच आ जाओ ते जंग करो। यहां गुरां ने हुण वचन करता हुण रक्षा भी करनगे। जे इन्ना क ना खिचण फिर आपां सिद्धे भी नहीं हुंदे। इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे भाई गुरां ने जो वचन कहा है वह वचन जरूर कमाया करो। माड़ी मोटी ढिल दिखाउणी चंगी नहीं। इस तरह फिर आपां नूं घाटा पैंदा। जिन्हां जिन्हां ने भी गुरु के वचनां दे उत्ते पहरा दिता है एक एक वचन नूं कमाया है उन्हां नूं सतगुरु महाराज निहाल कर दिता है। हां जे कोई अवग्या हो जांदी तां माफी मंग लो। यही दस्सिया है माफिया मंग लिया करो। सवेरे दुपहरे शाम रात महाराज तो माफी मंगते रहो। महाराज मेर करो सातों को गलती हो जाती है सौ गल्लां हो जांदियां ने सातों पूरी रहत नहीं कमाई जाती। हां थोड़े सिख ही आ पर नहीं कई बार साढ़े को ढिलाइया हो जांदियां ने। और सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह तो माफिया मंग लईए कि महाराज असं इन्ने योग नहीं हां सानू बख्श लो। इस तरह महाराज अगे हाथ जोड़ के बेनती करिए

0: महाराज ने भजन किया कि खालसा गुरु रूप है ते गुरु खालसा है युद्ध विच टिक के लड़ो हुण जाओ फिर जे साड़ी आस तकी है फिर पिछे ना दौड़ो टिक के जंग करो।
1: हतो रिपन दल को दल पकड़ो शस्त्र न क्रोध
0: क्रोध हुंदा क्रोध दे नाल वीर रस दे जा के शस्त्र पकड़ो अते दुश्मनां दे दल नूं मारना करो।
1: चौपाई सुन सतगुर के वरसां बैन
0: सुन के सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जिहड़े वार वर गए वचन सन वरसम यह वर हो गया खालसे नूं भावें गलती हो गई एक पर एक इन्ना वड्डा वर देना कि खालस गुरु गुर खालसा भाव के खालसा गुरु रूप है ते गुरु खालसा है इहदी सिंघां नूं बड़ी खुशी होए।
1: हट्यो खालसा रिस कर नैन
0: खालसे ने फिर जदों देखिया कि हुण वचन हो गया गुरां दा कि बहुत वीर रस विच आओ अते जंग करो वापस मुड़े पहाड़ियां वल नूं बहुत वीर रस अखां विच लालियां शस्त्र पकड़ के फिर टुट के पै गए।
1: धर ज्वाला बमणी अरदमणी
0: ज्वाला बमणी जिहड़ी बंदूक हुंदी है भाव इहदा नाम ज्वाला बमणी दुश्मन नूं मारन वाली।
1: चोरी गुलका गण रिपो समणी
0: रिपो तो भाव दुश्मन नूं शमन करन वाली नाश करन वालियां गोलियां फिर खालसे ने चलाईयां।
1: श्री गुर थिरहवै तनुख संभारे
0: महाराज जी ने जदों देखिया कि हुण खालसे ने अपनी भुल बख्शा ली अपनी गलती का एहसास किया है उस वक्त गुरां ने अपना तनख बाण संभाल लिया।
1: सपत बाण ऐचन कर मारे
0: महाराज ने सत तीर आसमान वल नूं चला दिते।
1: परी गगन मैं गर्व गुंजार
0: आकाश दे विच बहुत भारी गुंजार होए जिवें बदल गरजदा बड़ा भारी।
1: बेसमाने रिप सुन तुंकार
0: जदों इस तरह आकाश विचों आवाज आई गर्जन दी दुश्मन बड़ा हैरान होया सुन के।
1: एक ही बार हटे सब सिंह
0: इको ही वार सारे सिंह हटे भाव पिछे दुबारा जिहड़े इधर नूं मुड़े आ रहे सन पिछे नूं वापस पहाड़ियां वल नूं
1: मिल गए। ज्यों भूखा सिंह
0: जिवें मिर्ग नूं देख के भूखा शेर पैंदा है टुट के इस तरह खालसा वध्या है।
1: अगर जो मारत आवत ताए
0: अगे जिहड़े मारदे आउंदे सी ता के दौड़ के
1: कितक हते को मार हटाए
0: किन्ने क तां सिंघां ने पहाड़िए मार दिते अते किन्ने क मार के भजा दिते।
1: तोमर सेले सांग परहारे
0: ये सारियां इको ही किस्म बरछे दियां ने तोमर ते सेला ते सांग सोटी का फर्क है उहदी डांग दी लंबाई का फर्क है इस प्रकार उन्हां दे अगे फल का फर्क है देखण नूं इको ही चीज लगती है। सो इस तरीके नाल लंबे बरछे छोटियां बरछियां तो लंबे फल वालियां बरछियां मार मार के भजा दिते।
1: सिफर अगर कर किस खग मारे
0: कईयां ने अपनी तलवार दे नाल मारे ढाल दे नाल अपनी बचाओ कीते।
1: गुर बचते शहीद गन दौरे
0: जदों महाराज जी ने सत तीर आसमान वल चलाए तां शहीद सिंह जिहड़े हुंदे ने आकाशी फौजां जिन्हां नूं कहिंदे ने उह सारे दसवें पातशाह दे हुक्म विच चलदे ने करोड़ां दी गिणती च ने जो सृष्टि नूं चलाउण वाले ने। सो महाराज दा हुक्म पा के बहुत सारियां आकाश विचों फौजां उतर आईयां।
1: परे हेल कर भेरे पबारे
0: जदों उन्हां दा हल्ला होया दुश्मन इउं हो गए जिवें बौले हो जांदे ने इन्ना जबरदस्त हमला हो गया।
1: मची मार दीर्घ इक बारे
0: बहुत दीर्घ मार मची बड़ी तगड़ी मार मचाई शहीदां सिंघां ने आके।
1: مر مر پرتے پائے پسارے
0: مر مر کے لمے پی گئے پائے اپنے پیر پسار کے اسی وقت ہی انہوں کا تو بار نہیں چل سکتے وہ جی ایک برچا مارن سو سو بندہ کٹھا ہی ڈگتا ہے
1: جنم لنگ بھگے کو کھائے
0: مانو کہ جی میں